0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय

0: आयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
3: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
3: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
3: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
3: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
3: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
3: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
3: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
3: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर

0: अम्मा अम्मा
1: अरे अरे अम्मा। क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
2: चुप्पा
0: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश सोचा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी,
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये, ये, ये, ये, ये, ये

0: कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा। है
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है। बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
3: देखो,
0: ये पेड़
2: देख लो। अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा तो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया। अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: तू समझ गई?
2: अम्मा तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे।

0: फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे।

0: भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: ఇంతటితో ఈనాటి NCERT వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం సమాప్తం. ఆకాశవాణి వరంగల్ కేంద్రం మరికొద్దిసేపట్లో చిత్రసీమ

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और

0: सखी सहेली
1: की सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है, जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या, मतलब 15 दिन पहले
1: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहन

0: को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं,
1: जी
0: है ना नेहा?
1: जी बिल्कुल, बधाइयाँ हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश के दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: भाई देखिए, तो तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए।
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं साहब, हमें

0: तो दहेज से सख्त नफरत है। ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
1: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
0: खूब समझ रहा हूं आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
1: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
0: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
1: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
0: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
1: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
0: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
0: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।

0: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
1: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
1: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
0: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
0: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
1: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
0: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
1: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
3: मुझे मेज पर नहीं मिला।
1: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
4: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
0: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
4: मिल तो गया था, पर बस एक आंच की कसर रह गई।
0: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
2: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
4: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो

0: खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
1: मकार का मुंह काला।
2: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बिचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
3: एक आज की कसर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
4: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत।

0: निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
1: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
0: जी,

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों।

बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियाँ आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएँ भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप ले करके चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीज़ें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीज़ें करना लगता है उन्हें ज़रूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीज़ों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन

0: आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब
1: हाँ
0: घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफ़ी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज़्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने
1: जी
0: अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीज़ों का हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीज़ों, बुरी आदतों के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज़्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
0: बिल्कुल
1: उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद ही
0: बिल्कुल
1: होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहाँ अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ।
1: तो वहाँ आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना
0: छोड़ा
1: मुश्किल है,
0: मुश्किल
1: तो वहाँ
0: है।
1: संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे
1: जी
0: दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूँ तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है।
1: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी
0: है। बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हों, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हों, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो वही भी अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है। रिश्ते में रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना।
1: जहाँ तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नज़रिए को देखना ज़रूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
0: क्या बात,
1: और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को

0: सकते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें मानें और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो वो घबराहट
1: होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा,

0: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
1: बिल्कुल है। और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझें और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है
0: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते।
0: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो फिर
1: ना?
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ?
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी।
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए,
1: है ना?
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए, है ना? और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो कहेगी अरे ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौरियाँ तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीज़ें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जाँच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता

0: चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये
0: बिल्कुल
1: गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं
0: जी,
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया।

0: हेडेक हो गया तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
1: जी
0: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी जी तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
1: जी जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
1: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पर नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पर ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। यू नो, हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना,
0: तो मैं तो कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: दही से अच्छा हाँ। कोई प्रोबायोटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी।

0: श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन MRI, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज ख़ास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट के जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोलते हैं हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा

0: सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
0: बिल्कुल,
1: ख्याल
0: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
1: जी
0: मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी
0: और
1: क्या
0: काफ़ी
1: बात
0: सुना
1: है
0: है हमने।
1: जी।

0: फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना इज क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे,
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफ़ी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: बात कर रहे थे, जो बहुत बड़ी समस्या है वहां पर, एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है, और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो सिम खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो
0: जी
1: उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतड़ी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती हैं, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट

0: अगर कोई सीख है वो डाइट है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज़ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया।
0: हाँ,
1: ये क्या समस्या है?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है, हाँ, और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है
1: जी।
0: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी, जी।
0: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। हाँ। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, हाँ, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है तो?
0: हाँ, तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है।

0: होती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट ALD, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है। बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखते हैं, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं। लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो IBS की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय IBS की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो, कुछ नहीं
0: नहीं नहीं खा, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज़्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है IBS?
0: एक्चुअली IBS में कुछ नहीं आया होता, IBS इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग।

0: पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो
1: चले चलो, लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहे ये तेल अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिंस, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिंस आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड्स भी आता है, और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी ईजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत ईयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल

0: नेचुरल सूटिकल्स करके बिकते हैं जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी जो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।